0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो का मावेस ही मना ला
4: अमिल्ला फैसा आंधा गें अमिल्ला हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहाम होए कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथोरे दुम फतु के इस्तेमाल करूं गे साबुन दिमावा सिही मसल तो गा आहार को हैम मिलियन वुरे किनमी हु मरुआ कमा ताफासी साब तकुं दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा
6: मी अहमद आमिर

के संडे फिर पप्पू जाए डांस क्लास, अंडे पे अंडे खाके पप्पू नाचे दिन का नाचे

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में।

हालांकि के इंडिया के बॉलीवुड के फिल्मी दायरा के मशहूर कंगुदा फवा हुनर विरला वक्यों तेरिए देहास एगार वनाहर बॉलीवुड अतारा फुमा फोहेना वनी आशिकी टू एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी प्रेम रतन दन पायो आदि किक फदा कामयाब फिल्म तक मशहूर एतल लवत के किया दीफा